हर का दास नीच कुल सुने तिसके संखिन में उदरे कोट मज्जन जाके सुन नाम कोट पूजा जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट भला गुरते विद जानी मन अपने में फिर चेत बिन सजाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रचना राम कै रंग जाके काम उदरे सब भूख जाके काम न जोए दूत जाके काम तेरा बटगमर जाके काम होवे तू अमर जाके चाकर को नहीं डान जाके चाकर को नहीं बान जाके दफ्तर पुछे ना लेखा ता की चाकरी करो विशेखा जाके ऊन नाई कहूं बात एक आपने कह भात जाकी दिष्टो ऐसा निहाल मन मेरे कर ताकी काल ना को चदर नाई को मूड़ा ना को ही नाई को सूरा जित को लाया तिथि लागा सो सेवक नानक जिस भागा व गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सरबार जारी त्यों जीवे सख्त नाम विसारी एक निमक जो सिमरन में जिया कोट दिन सलाख सदा थिरथिया रहो बिन सिमरन त्रे कर्म करास काग बतन विष्टा में बास बिन सिमरन पै कुकर काम बाग साक्त विश्वा पूतन नाम बिन सिमरन जैसे सीन सिंह सतारा बोले कूर साक्त मुहकारा बिन सिमरन करते की न्याय साक्त थान पृष्ठ फिराए बिन सिमरन कुकर हर काया साक्त लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म घाती साक्त नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर भगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर के बचन मोहे परम गत पाए गुर पूरे मेरी पैज रखाए गुर के बचन त्यायो मोहे नाओ गुर प्रसाद मोहे मिलिया था ओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन बखाणी गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वट प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा भरम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्ज सिद्ध गुर के बचन पाया नाव निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा तिसकी कटिए जमकी फासा गुर के बचन जागया मेरा कर्म नान गुर भेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा तिस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास राओ गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोय तोय पीमा गुर की रेनत मज्जन करो जन जन की होमे मल हरो तिस गुर को चूलावो पाखा महा अगन दे हाथ दे राखा तिस गुर के ग्रह ढोवो पानी जिस गुर ते अकल गत जानी तिस गुर के ग्रह पीसो नीत तिस प्रसाद बैरी समीत जिस गुरमुख को दीना जियो अपना दास राय आपे मुलियो आपे लायो अपना प्यार सासदा तिस गुर को करी नमस्कार काल कलेस पै परम दुख नाथा कौ नानक मेरा गुर समराथा गौड़ी महला पंजवा मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देओ नाम बिना त्रिग त्रिग स्नेहो राओ नाम बिना जो पैरे खाए जो कुकर जूठन में पाए नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथिया सिगार नाम विसार करे रस भोग सुख सुपे नहीं तन में रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना रादा चोर की न्याय जम प्रभादा लाख डंबर बहुत विस्तारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सुई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा
ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਵਾਹੇ ਸੋ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਚਾਲੈ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਿਤ ਪਰ ਲੈ ਰਹਾਉ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ ਜੈ ਪੇ ਖਾਂ ਤਹਿਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਚਤਰ ਕੀ ਚਤਰ ਜੀ ਦਾਤਾ ਭਾਈ ਭੂਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਾ

ज्ञान मंजना परपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतित पवित करा गुरदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा आ मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हरे नमस्कारा एहो सलोक आदि अंत पढ़ना गौड़ी सुखमणी महला पंजवा सलोक एक ओंकारी सतगुरु परिषाद आद गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है श्री गुरदेव नम है अष्टपदी सिमरु सिमर सिमर सुख पावू कल कलेश तन माहे मटावू सिमरु जासब संबर एक नाम जपत अगनंत अनेक वेद प्राण सिमर सुधा आखिर कीने राम नाम एक आखिर किनका एक जी जी बसावी ताकि महिमा गणी न आवी कांकी एक दर्स तोहारू नानक उन संग मोहे अदारू सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहो प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ रे प्रभ सिमरत कस बिघन न लागे प्रभ कै सिमरन अन दिन जागे प्रभ कै सिमरन पाओ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ कै सिमरन साध कै संग सरन दान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निधि प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्धि प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दर गै मानी प्रभ कै सिमरन होई सु भला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरे जिपया जिने आप सिमराए नानक तां कै लाग्यो पाई प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन त्रिसना बूजा प्रभ कै सिमरन सब की सूजै प्रभ कै सिमरन जम तरासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन की मल जाए अमृत नाम रिदमहि समाए प्रभ जी बसे साध की रसन नानक जानका दासन दसन प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को

की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान कर व्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काव आप हार दे मोहे बचाव। सुखी बसै मोर परवारा सेवक सिख सबै करतारा।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर

आओ सहस तव नैन नन नैन हह तोहे काओ सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोय तिसदा चानण सब मह चानण होय गुरसाखी जोत प्रगट होय जो तिस भावै।

प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से वे मोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी, सिमरनते लागे जिने आप दे अल्ला, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से परे उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख व्यावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अंधक नेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कबून चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सह समानी, प्रभु के सिमरन निश्चले आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनाथ चुनकार सुख।

हर सिमरन पै सद जती दाते हर सिमरन नी चौकुंड जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यों सगल कारा हर सिमरन में आव नकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ संत मारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत ना भाई मनु हा नाम तेरे संसाय जय महा भ्यान दूत जम दले तै केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तो है सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरे अनक माया रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जपत गावे जे मार गे जात केला ते हर का नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख वाही नाम जप तै पार पराही अनक बिगन जय आय सिंघारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबू ना धोवे हर का नाम कोट पाव खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध कै संग

सात श्लोक आगमगाद पार ब्रह्मसुए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की आचर्य कथा अष्टपदी साध के संग मुकु जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रम नेरा साध संग सब उतन मेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बढ़ने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रभुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कथू तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पिन साध संग नान प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सम्मीत साधु के संग पुनीत साध संग के स्यों नहीं बैर साध के संग न बिगा पैर साध के संग नाई को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाई ओताप साध के संग तजे सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बनियाए साध के संग न कबू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त गोचर लह साधु के संग अजर सह साध के संग बसे थान उचे साधु के संग महल पहुचे साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नान साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल हरे साध संग साध नमीर कुटम निस्तारे साधु के संग सोतन पावे जिस तंते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नान साध के संग सबल जन्म साध के संग नहीं कुछ काल दर्शन पेड़ तो उतने आल साध के संग कलोकता हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यहाँ वहाँ सोहिला साध संग विश्व तर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न व्यर्थ जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उधरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मंते विसरे साध संग सर्पन निस्तरे साध के संग लगे प्रम मीठा साधु के संग कट कट डिठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नान साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता वख्याने साध की उपमा तय गुण तय दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूंचते मूंची साध की शोभा साध बन आई नान साध प्रभ भेद ना पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे किस बिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी

मन अपने सबते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी नाथ मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मैं आप। ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ पुराना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान।

जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै वसै प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम अवतार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अम्बुद्ध आगत।

नेतर साध की टहल संत संगेत कर्ण ना सुने काउ की निंदा सब दे जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विखिया पर हरे मन की वास नमनते डरे इंद्री जित पंच दोग ते रहत नान कोट मदे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते होए भिन्न कर्म करत हो वै नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउ फल की इच्छा नहीं बासे केवल भगत कीर्तन संग राचे

तैसा हरक तैसा सोग सदा आनंद नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साए जुगत नानक ओपुर के ये जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिस जित कर रखे तैसा तिन्ना आपे करण करावन जोग प्रभावे सोई पुन होग पसरियो आप होए अनंत रंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता अपना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जाने अंत न पारावार।

मन तन नाम रतेक रंग साब से पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत सुमाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सतगुरबान। शलोक सुगी वसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसके अंतराज अभिमान सो नर्क पाती ओवत स्वान। जो जाने मैं जो वनवंत सोवत विष्टा का जंत आप उसको कर्म बंद कावे जन्म रे बोजोन परमावे। तान भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे। नानकियां मुक्ता किस कुबावे तनवंता होए कर करवावे। त्रिण समान के संग न जावे बोलश्कर मानु कुपर करयास पल पीतर दाका होए बिना सबदे आप जाने बलवंत किन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरे गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए परवान। कोट कर्म करे ओ तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनकत।

सोसे कोगस्ते डरे जैसा सात ऐसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तत्सब उजिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सो यूल ना कि जन्मे ना किस मरे आपन चलते आप ही करे आपन जावन दृष्टान दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्टि आपे आप सकल में आपन जुग दृष्टा प्योताप अवना सीना ही किस खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड लख भेद पुर प्रताप आप जपाए नानक जाप जिन प्रजाता सो सोभा वंद सगल संसार उदरे तन मंद प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दूब सारण आपे मेले कृपाल गुरु का सब जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे वडभागे नाम जत पावे विश्राम नानक तिन पुर को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय होवे सो होए कटने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन्मी ठलगाना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिसते उपजे तिसमाय समाय सुख निधान उनु बनयाए आप उसको आप दीनो मान नान प्रभ जने को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ मिर्था जानन हार जाके सिमरन उदरी है

मारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात राखे ताकि गत में कोई न लाके प्रके सेवक को ना पहुंचे प्रके सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रा अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दिस प्रटाया निकी कीरी में कल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका सांस न काट दे आव ताक राख दे करात मान जतन करत बात से करता मिर्थे जात मारे ना राखे अब न कोये सब जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलखोडाणी बार बार बार प्रभ जपी है पी अमृते मंत्र पिय नाम रतन जन गुरु मुख पाया तिस्कि जमना इंदिष्टाया नाम धन नमो रूप रंग नमो सुखार नाग संग नाम रज जंत्र तन मंत्र नमे नाम समाने उठत बै

जावे कै रगम पार। तब नरक स्वरूप को कौन अवतार, जब निर्गुण पर सह स्वाय, तब से सत का उगदाय, जब आप है आप अपनी जोत रहे, तब कवन निरार कवन कत डरे, आपने चलते आप करने हार, नानक ठाकर गम पार, अपना सी सुखिया अपने आसन तय, जन्म मरण को काम बनासन, जब पूर्ण करता प्रसोए, तब जंग की त्रास को हो किस हो, जब अवगत गोचर प्रवेका, तब चित्रगुप्त किस पूछ लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपने आप ये चर्जा नानक आपन रूप आप ये पर जा।

अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण गाए सुहाओ आठ पैर पर देखो नेरा मिटे ज्ञान मिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय विसावो मन से नानक फल पावो हालत पलत दो सुहार राम नाम अंतर उधार पूरे गुकी पूरी दिखिया जिस मन वसे साज प्रीख्या मंत्र नाम जो बोल बुलाए दुख दर्द मंते बो जाए सच पवार को बपारी

जी की जुगत जाके सव्यात पूरे गुरु की पूरी दिख्या जिसमें बसे ते साज परीख्या मंत्र नाम जपो लुलाए दुख दर्द मन ते पो जाए सच व्यापार करो अपारी दरगह निवेखी तुम्हारी एका टेक रखो मनमाए नानक बोर ना आवे जाए तिस्ते दूर का को जाए उभरे राखण हार ते आए निरपो जपे सगल पाओ मिटे प्र कृपा दे प्राणी छुटे जिस पर राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोयन पहुचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कै कारज पूरा मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन भेख दो दृश श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सबल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा से प्रवान अंतर जामे पुरख प्रदान जिस मन बसे सो होत निहाल ताके निकना आवद काल अमर भय अमरावत पाया सात संग नान घर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश सार कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रविठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक कट माए अनकरंग नाना अधिष्ठाए नौन दे अमृत प्रभु का नाम दे में इसका विश्राम सुन समाद अन तैनात कह न जाये चर्च समा तिन देखिया जिस जाप दिखाए नान ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कड़कड़ प्या प्रया भगवंत धरण माए आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण ब्रतवाल बंतन पर्वत है पार रम जैसी आज्ञा तैसा कर्म बौन पानी बेसंतर माए चार कुंड है दिशे समाए तिस्ते भिन्न ही कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुभाओ वेद प्राण सिमृत में देख ससे सूर नखत्र में एक बाणी प्रभु की सब को बोले आप डोल न कबून डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइये गुणे मोल सर्व जोत में जाकी जोत हारियो स्वामी ओत बोध गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में है विश्वास संत जना का पेखन साब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जन जाता तस की ये रहत सत वचन साधु सब कह जो जो ए सोए सुख माने कारण कराव नहार प्रजाने अंतर बसे बार भी ओ ही नान दर्शन देख सब मोही ओ आप सत किया सब सत तिस प्रदे सगली उत्पत तिस पावे ता कर विस्तार तिस पावे ता एक अंकार अंक कला लखी ना जाए जिस पावे तिस लय मिलाए कम निकट कमन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतर गत आप जनाए नान तिस जन आप बुझाए सर भूत अवतारा सब नैन आप पेखण हारा सगल समग्री जाका तना आपन जासा भी सुना आपन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सबके मद लिप्त हो रहे जोगच कहना सो आपे कहे आग्ञा आवे आग्ञा जाए नान जा पावे तन ले समाये इसते हुए सुनाई बुरा उरे कहो किने किस कराया भला कर तू था निकी आपे जाने अपने जी की आप साजदारी सब साज ओत बोध आपन संग्राज दागी गदमत कही न जाए दूसर होए तो सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान क्यों जान जो जाने तिसरा सुख होए

जन अवन काए स्वाओ जन के संग आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानत जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर भेग साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर के उतरे चंद आस नित त्यागो तरंग संजना की धूर मन मांगे आप छोड़ बेनती करो सा संग अग्न सागर तरो हर दिन के परले ओ भंडार नान गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत पियो चचित भो नारायण एक एक रूप जाके रंग नेक उपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले रतन संत कुमावत हो तो उधार आप तेरे लोक निस्तार सबल जीवन सबलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन अंध करे बरगा जय प्रटे गोपाल महाद के माथे नान गोदरे तिनके साथे सन जो सुन सनी आए कर कृपा प्रभ्या मिलाए मिट गए बैर पे सबरे ने अमृत नाम साथ संग लैन

यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वह जानिए सब आपे सचे यार थापे आना जाए किता ना होए आपे आप निरंजन सोए

दुख पाप का नाश। सुने है सरा गुना के गाह, सुने है सेख पीर पात साह, सुने है अंधे पावे राहो, सुने है हाथ होवे असगाहो। नानक भगता सदा विंगास, सुने है दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए।

मन कोय, मन है सुरत हुए मन बुद्ध, मन है सगल भवन की सुध, मन है बोह चोटा ना खाए, मन जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोय। मन मार्ग ठाक न पाए, मन पास्यो प्रगट जाए, मन माग न चलै पंथ, मन धर्म से ती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोय। मन पावे मुख द्वार, मन परवारे साधार, मन तर तारे गुरसिख, मन नानक पवे न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोय। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचे सुह है दर राजान,

एक वेस एक दूजी बहु लख होहे लख होवे लख बीस लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीस इतराहे पद पवड़ियां चढ़िए होए हकीस सुन गल्ला आकाश की कीटाया ही रीस

कहू कह ना सकत कह अचाल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गनिजय तिर पव महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रेन कहत तुव सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत।

ईशान जले है थल है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है अदेश है अपेस है पजांग प्रयाशंद अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नवाह तवंग नाथे नवाह तवंग प्रवाथे नवाह तवंग गंजे नवाह तवंग अपंजे

सर्व सब रचे स्वयं पव गण भंजनहार कालहीन कला संयुगते अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहते अभूत अलांख्य पेश।

कै सर्वत्र देश है, कै सर्वत्र पेश है, कै सर्वत्र काल है, कै सर्वत्र पाल है, कै सर्वत्र हंता है, कै सर्वत्र गंता, कै सर्वत्र पेखी, कै सर्वत्र पेखी, कै सर्वत्र काज है, कै सर्वत्र के सर्वत्र काज है, कै सर्वत्र राज है, कै सर्वत्र सुख है, कै सर्वत्र पोख है, कै सर्वत्र तराण है, कै सर्वत्र पराण है, कै सर्वत्र देश है, कै सर्वत्र पेश है, कै सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, कै सर्वत्र जाप्य है, कै सर्वत्र थाप्य है, कै सर्वत्र पान है, कै सर्वत्र मान है, कै सर्वत्र इंद्र है, कै सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कली में, के परमं फही में, के आकल अला में, के साहेब कला में, के हुसन अल वजू है, तो मामल रुजू है, हमें सल सलाम है, सलीख तो मुदाम है।

तोर कर्म जनक तुद पाया तो तिनी खसम ते आया। एना जनता कह बस कृष्ण है तुत वे के जगत पाया। एक नन तो मेल है कप तुद खुआया। गुरु कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया। सहजे ही सच समाया, सहजे ही सच समाया।

चलने ने रैन सवाई कीर्तन है जो अखंड कीर्तनी जथा हर साल प्रोग्राम करते ने अपना उन्हों वालों शामा रैस तो उपरंत सारी रात कीर्तन होगा। सत्कार जो भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी ते होर जथे आए हुए ने बाहरों ऑस्ट्रेलिया तो उन्होंने सारे ने अपना समा लाना है। सो बेनती करांगा सारे माई भाई शाम नूं वध चढ़ के आओ कीर्तन करन कीर्तन सुन करके अपना जन्म सफला करिए। गुरु के चरणों में बैठ करके जो प्रोग्राम चल रहा है अखंड पाठां दा धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी मीरी पीरी दे मालक उन्हां दा गुरगद्दी दिवस मीरी पीरी दिवस तन तन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज उन्हों का प्रकाश दिहाड़ा इन्हों दो अखंड पाठों के भोग कल सवेरे पैने ने। सो आओ गुरु की हजूरी में बैठ के गुरु की खुशियां प्राप्त करिए। आओ सर्वन करो कथा जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा सासंग जीओ वड्डियां पागां वाले हां, हमारा साहब जी की पावन पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के अपने जीवन के कीमती समान समय नूं सफल बना रहे हैं। और भागां वाले जो शरीर मिलिया है, सवास मिले ने, जिंदगी मिली है, अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी ने पावन गुरबाणी दे जाप, गुरबाणी दे कीर्तन गुरु साहिब जी ने प्यारियां पासों श्रवण किए हैं। हुण लड़ीवार गुरबाणी की व्याख्या का समा है। महाराज साहब सच्चे पातशाह जी अपनी बाणी दे राही सानू जीवन दियां सेधां बख्शिश कीतियां ने, जिंदगी जीवन दे ढंग दसे ने, और इनू सौखा सुखमई किवें जीविया जा सकता ये दसिया है। जिंदगी ता सब जुंदे है, पर सुकून वाली जिंदगी किनू किनू मिलती है? रब दा प्यार, चलो वाहिगुरु नू भी आपां एक सैकंड लई परे कर लईए, आराम दी जिंदगी, सुकून दी जिंदगी, शांति दी जिंदगी, टिका दी जिंदगी किनू किनू नसीब होंदी है? बंदे दे मन च कोई संकल्प ना होवे, कोई दौड़ भज ना होवे, कोई चिंता ना होवे दिमाग दे उत्ते, जो उनू मिलिया उहदे च सैटिस्फाई होवे, जिन्ना कु भी है कोल उहदे च रजिया हो बंदा। महाराज जी कहते सहस कटे लक काउट तावै, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। बंदा जिहड़ा बंदे दी वासना नहीं रजदी, ते वासना जिहड़ी है भटकाई फिरदी बंदे नूं। हजारां कमा के लखां दी वासना, लखां कमा के करोड़ां दी वासना, करोड़ां कमा के अरबां दी वासना, बस भाई गुरुदास जी कहिंदे वासना वधदा आवै जावै। वासना दा वधिया होया फिर आउंदा जांदा रहिंदा है।

आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में सतगुरु तप पाया सहज सेती राग रतन परिवार परियां शब्द गावने आईया

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहै, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नाउ सिमरौ श्री हर राय, श्री हरि कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ ने दया में ताए, सब थाई हुए सहाय, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत धन धन, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी धार दा ध्यान तरके बोलना जी, पंजा प्यारिया चौहा साहब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जना नाम जपिया बन के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी, जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए, खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए, गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया, सिखी सिदके सां सवासा संग निभाया, तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी, पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी, प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए, जहां जहां खालसा जी साहिब

सत कृपा करि जगदीश्वर तब हर हर हर जस चायो जन नानक हर पेट स्वामी दुख में रोग वायो बैराड़ी माला चौथा हर जन राम नाम गुण गावै जे कोई नंद करे हर जन की अपना गुण न गवावै राहो जो कुछ करे सुआप स्वामी हर आपे कार कमावै हर आपे हिम्मत देवै स्वामी हर आपे बोल बुलावै हर आपे पंच तत् विसारा विच तत्व पंच आप पावै जन नानक सतगुरु मेले आपे हर आपे जगर चुकावै बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निसारा कोट कोटंतर के पाव सब खोवै हर पवजर पार उतारा रहाऊ।

हरे आपे सासरा भरत नहाय हीरा हरे आपे किया पसारा नानक दिस कृपा करे सो हर नाम व्याज जाय सो स्वाहा सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन रंकारा सदा सदा हर ध्याय सुखदाता जा का अंत न पारा वारा राहो

नाम दिवायो सर्व सुकरणाम वडाई गुरु प्रसाद नानक मत पाई तेरा राग तिलंग महला पहला कर पहला एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूने स भंग गुरु प्रसाद यक अर्ध गुप्तम पेस्तो दर गोस कुन करतार हका कबीर करीम तू बेद परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहक दिल तहकीक दिल दानी मम सर मोह अज़राइल गिरफ्त दिलहे च ना दानी राव जन पिसर पदर बरा बिरादरा कस ने दस संगीर आखिर बेअफतम कस न दारद चू सबद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर दे बदी ख्याल गाहे नानके कार करदम ममी ईचनी अहवाल बद बख्त हम चू

Jinnu pāi rāngarvāi bhattā vikhai vākhu akela satcha sota sāhu satchata pāvasa satchada niyāo karega masola kāya kapda tukduko hosi indastān samālsi bolla āmna athatare jānasatāname hūrpi uṭsi mardika chela Sach ki bani nanaki akhe sach sunai se sach ki bela tilang mahala chautha karduja ek uankar sadguru prasad sab aye hukum khas ma hukum sab vartani sach sahib sach akhel sab hartani salahyo sach sab upar hartani जस नाही कोय सरीक कस लेखा हो गनीरा पौण पाणि तरती आकाश कर मंदर हर बनी विच वरतै नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नह फल कर्म कमावे बफावे दुर्मतिया जब आने बल वंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सैसा न चेते हर नामा खिन में बिन सै सब झूठ मेरे मन त्याय रामा राहो सावेला चित नयावे जताए कंटक काल ग्रस है तिसाय तिस नानक लय छाए जिस कृपा कर हृदय वसाए तिलंग महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद है खाक नूर कर दंग आलम दुनिया ए असमान जिमें दरखत आप जाय सुखदाय बंद

सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जन जपया तिद को बलिहार तिदके संग तरह संसार कौ नानक प्रबलो चापूर संत जन के बादशाह तूर तिलंग महला पंजमा कर तीजा मेहरवान साहेब मेहरवान साहेब मेरा मेहरवान जी सगल को दे दान रहो तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार जिन

Tu samarat akate agotar dio penetri ras ram teri sukhaya sada nanak ki aradas tilang mahalla panjama karti ja karte kudarte mutak din duniya ek tu hi sab khalak hite paak rahau खिन में थाप थाप जा आचर्य तेरे रूप कौन जाने चल तेरे अंधियारे में दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सरण जे तो डेरा दे सो क्यों दो जक जाए अजराइल यार बंदे जे तेरा आधार गुना उसके स

साहिब जीओ पूरा प्रभ राध्या पूरा जंक नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सो कहो टल गुर सेविया एहन सो सहज सो पाय दर्शन परस्या गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिवत खसम दे नुरी अर्शों कुरसों चट्टियां।

जो जन जान भजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कब होना हार टाल जो जान है पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिख धारा पंचे मंग है हाला मग है हाला जिमी नाही मैं किसे की बोई।

नौ ढाडी दसम सुपतावे रैयत बसना देही, डोरी पूरी मा पहनाई बह बिस्टा ला लेही। बहत्तर कारिक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रजम।

इस जुग में है वड़ियाई पाई, पूरे गुर ते नाम ते आई, जह देखा तह रहे समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पहाग गुर पूरा पाया, अंध नाम अंतर नाम निदान दिखाया गुरु।

आधार है तुर पूर्व लिखे वड कर्मा गुर सत गुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा हमरा चित लोभित मोहे बिखिया बहुत दुर

रहो कर कृपा हस्त प्राप्ति नहीं जगत उदार अखंड प्रताप दुख बिन से सुख आनंद परेशा कृष्ण बुझी मन तन सच त्राप अनाथ को नाथ शरण समृता सगल सिसको माई बाप भगत चल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बिलावल महला पंजा जैसे उपजा तिसे पछाण पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल के महो ही कल्याण रहो गुरु पूरा भेट बड़ पागे अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे कर अपने बड़ समर्थ निमाने को मान परम पै बिनस गए खिन भीतर अंधकार प्रगटे चानन सास सास राधे नानक सदा सदा जाय कुर्बान बिलावल महला पंजवा दोवे थाम रखे गुर सूरे हल पलत पार ब्रह्म सवारे कारज होए सगले पूरे रहो हर हर नाम जपत सुख सहजे माजन हो साधु तूरे आवण जान रहे तित पाए जन्म मरण के मिटे बिसूरे परम पै तरे छुटे पै पा जम के कट कट एक रहा पर पूरे नानक शरण परे दुख पंजन अंतर बाहर पे एक जूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देख दुख न सही कबूल हो वो दृष्टा गोचर जिया के संग बसाए लो प्रीतम प्राण उदार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार सुमारी सास सास प्रभ तुझे चितारी कृपा निद प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल महला पंजा तन तन जो बन चलत गया राम नाम का पचन न की नो करत विकार निस पौर पाया रहो अनेक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता का सुखीन गया मेरी मेरी कर कर मूटो पाप कर रहे हैं परी दया महाविकार घोर दुख सागर जिसमें प्राणी गलत पया सन प्रे नानक स्वामी की बाह पकड़ प्रभ काट लिया बिलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चक मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहो गए ब्याज उपाद समनाशी अंगीकार कियो करतार शांत सुख अर अनद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उदहार जियो पिंड तन रास प्रभु तेरी तू समर स्वामी मेरा दास अपने को राख हारा नानक दास सदा है चीरा बिलावल महला पंजा गोबन सिमर हो कल्याण मिटी उपाद भया सुख साचा अंतर जामी सिमरया जान रहो जिसके जिया तिन किए सुखाले भगत ना को साचा तान दास अपन किया पे राखे पै पंजन ऊपर करते मान भई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काडे चाण सुख से आनंद गनेरे नानक जीवे हर गुण विखाण बिलावल महला पंजा पार ब्रह्म प्रपय कृपाल कार्य सगल सवारे सगल जप जप साधु भय निहाल रो अंगीकार किया प्रभ अपने दोखे सगले भय रवाल कंठ लाए राखे जन अपने उदलिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल कर आए निंद के मुख होए काल कहो नानक मेरा सतगुरु पूरा गुर प्रसाद प्रभ निहाल बिलावल महला पंजा मूल लालन सो प्रीत मणि रहो तोरी ना टूटा छोरी ना छुट्टा ऐसी मालो खिंच तनी दिन सदैन मन मह बसरत है तू कर कृपा प्रभ अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकट कथा जाके बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोह करो

तुम समर्था कारण करण ढाकन ढाक पिंड को मेरे मोहे अपराधी शरण चरण रहो जो जो की न सो तुम जानो पे क्यों ठोर नहीं कुछ टीट मकरण बड़ प्रताप सुनो प्रभ तुम रो कोट अगा तेरो नाम हरण अमर सोशल सड पूलन तुम रो बिंड पति तू धरण करणा माई किरपाल कृपा निर जीवन पद दान घर दर्शन बिलावल महला पंजवा ऐसी कृपा मोहे करो संता चरण हमारो माता नैन दर्श तन तूर परहु रहो गुर को शबल मेरे हीरे बासे हरणा मा मन संग तरहो तस्कर पंज निवार उठाकर सगलो परमा होम जरो जो तुम करो सोई पल मन है पावन दुबदा दूर तरो नानके प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरहो बिलावल महला पंजवा ऐसी दिखिया जन से अमंगा तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा तुमरी सेवरा तुम्हारे अंगा रहो जन की टैल सुखन जन को उठन बैठन जन के संगा जन चर दज मुख माचे लागी आशा पूरन अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाम की निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की टूर कियो मज नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवा ज्यो पावे तो मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहो मोह निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच ना साको तुमरी काल तुमरी गट में तुम ही जानो जियो पिंड सब तुम रो माल अंतर जामे पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होय हमारो नानक प्रभ जियो नजर निहाल बिलावल मल्ला पंजा राक्षदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल

अनेक भगत अनेक जन तारे सिमरे अनेक मणि अंदले टिक निर्धन तन पाय प्रभु नानक अनेक गुणी राग बिलावल मोहल्ला पंजवा घर तेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवे हवे हार कजर वस्त्र अवरण कीने ओडीनी ओडीनी ओडीनी काव कर आवेरी रव सहरण सुहागण चरण शीश

फल तरम कहे तो मानो साच कहत मैं या को जैसे पण जल में रख दै रहे तय पानी जैसे ही तुम तय पछानो भगत हीन जो प्राणी कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर ये भेद बतावै कहो नानक सोए नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावै बिलाबल अष्टपदिया महला पहला कर दसवा इकम ओंकार सतगुर प्रसाद निकट से देखे सब सोई गुरमुख बिरला बूझै कोई विण पै पइए भगत न होई शब्द तय सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रसमान रहाओ ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई कट कट बाज करे दुख होई कट कहने ते रहे न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रह

गाय, होती उज्जल तिलक गल माला, अंत क्रोध पढ़ाए नाट साला। नाम विसार माया मलबिया, बिन गुरु भगत नाई सुख थिया। सूकर सुवन गर्धव मंजारा, पशु मलेच नीच चंडाला। गुरते मोह फेरे तिन जोन पवाइया, बंधन बांधिया आइय जाइय। गुर सेवा ते लै पदार्थ, हिरदे नाम सदा किरतार्थ। साचे दर गया पूछना होए, माने हुकुम सीजे दर सोए। सतगुर मिले ता तिसको जाने, दहर जाई हुकम पछाण।

गुर कै शब्द पकड़ बंड पैया हर हर नाम पूत बोहटा खेवट शब्द गुर पार लंगैया जम जगती नेड़ न आवे ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावे सदा दिन राति में हर जस कहते आंचन लैया गुरमुख मनो एकत घर आवे मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मन तृप्त है सरण वाणी गुर शब्द सुनैया।

चंदन होइया साकत कूड़े ऊब सूक हुए मन अभिमान बिछड़ दुर गैया हर गत मित करता आपे जाने सब विद हर हर आप बनैया जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे जो तुर लिखिया सो मिटे ना मटैया रतन पदार्थ गुर तो पावे सागर भगत भंडार खुलैया गुर चरणी एक सरदा उपजे मैं हर गुण कहते त्रिपतना भैया परम विराग नित नित हर त्याए मैं हर गुण कहते पावनी कहिया बार बार खिन खिन पल

सतगुरु परस हरनाम समैया जानकी टेक हरनाम टकैया सतगुर की तरला का जावा गुर कृपा ते।

का शवल तन पसम दड़ैया अमर पिंड पय साधु संग जन्म मरण दो मिट गैया मेरे मन साज संगत मिल रहिया कृपा करो मधुसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पघैया रहु तज ग्रस्त पया बनवासी एक खिन मनुआ टिके नाटकैया ताव जताए तदे कर आवे हर हर साधु शरण पोइया तिया पूत छोड़ सन्यासी आशा आस मन बहुत करैया आशा आस करे निर्नी बूझे गुर कै शब्द निराश सुख लैया उपजी तरकत गंबर हुआ मन दिस चल चल गमन करैया पर पवन करे बूझे नहीं तिसना मिले संग साध दया कर लैया आसन सिद्ध सुखै बो तेरे मन मांगे रिद्ध सिद्ध चेटक चेटकैया तृप संतोक मन शांत न आवे मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज से रज से तज उत पुज सवरण रूप जी जंतु पैया साधु शरण परे सो उबरा खत्रे बहमण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जद कबीर तलोचन औ जात रबदास मार समैया जो जो मिला साधु जन संगत तन तन्ना जट सैन मिलया हरदैया संत जना की हर

हम तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हर कंठ है बनया मन मोती चूर बड़ गहन गहनैया हर हर सदा सेज बिछाई प्रभु छूट न सके बहुत मन भैया कहे प्रभु अवर अवर किस की जय सब बाद से सिगार फोकट फुकटैया कियो सिगार मिलन कह ताई प्रभ लियो सुहागण सुख मुख भैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करे तेरे वश पैया दया दीन करो रख ले वो नानक हर गुरु शरण सुई।

राम गुर के पाए चलो सत्संग उत्ती राम तन सत्संग उत्ती हर संग सुती संग सखी सहेलिया एक पाए एक मान नाम वसिया सतगुरु हम मेलिया दिन रहन घड़ी न चसा विसर सास सास निरंजनो शब्द जोत जगाए देवक नानका पंजनो जोत सुबाइड़िए त्रिपवन सारे राम घट घट रब रया लख भारे।

आनंद आनंद बाजे बाजे अंग मात मन के त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिबलागी बिलावल माला पंजवा भाग सुलखना।

लगावा अमृत प्रेह का नाम है अंदले टोहनी ओह मो ओ जो है वो प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी मम चित्र चंचल है अनक भाव दिखावे हो ठीठ मीठी मन लाग है नाम लैंदा आवे।

सुख सागर प्रभाइय जब हो भागो राम मारन मान मंजाइय हर चरणी लागो राम छुड़ सहन पचैत्री दुर्म बुद्ध त्यागो राम नानक पौ सरनाई राम राय तुर सुहागो राम सुब्रभ तज कत जाइय।

सतगुरु अगे कार कमावन को दिए हर सेवक असि वडियाई देखो हर संतोह जन बिच काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कढ़ीए हर हर कृपाल हुआ भगत जय ना उपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिये श्लोक महला तीजा अंदर कपड़ सदा दुख है मन मुख ध्यान न ला गए दुख दुख विचकार कमावनी दुख वरत दुख आ गए करमी सतगुरु भेटिए ता सच नाम लिव लागे नानक सहजे सुख होए अंदर भ्रम पौ भाग है महला तीजा गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाम मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान प्रकाशया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया महला तीजा मन महले मर गुबार गुरमुख निर्मल हर राख्या अवतार भरत नानक सुनो जन पाई सतगुर सेव हो मैं मल जाई अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंधा नित मार दूजे पाए सुते कबे न जागे माया मोह प्यार नाम न चेते सबद न विचार मन मुका विचार हर नाम न पाया बरता जन्म गवाया नानक जा मार करे खुआर पौड़ी जिसनु हर भगत सच बख्शिय सो सच्चा साहो तिसके मोहताज लोग कटदा होर त हट न वत न विसाहो जना को सनमुख हो वैसो हर रास लय बेमुख पस पाहो हर गनाम के व्यापारी हर भगत है जम जगत इतना नेड़ न जाहो जन नानक हर नाम धन लद्या सदा।

0: आपन संग आप रब राते
1: तुमरी उस्तर तुमते होए
0: नान के अवर न जानस कोए
1: सरब तरम में सेठ तरम
0: हर को नाम जप निर्मल करम
1: सगल किरिया में उत्तम किरिया
0: सार संग दुर्मत मल हिरिया
1: सगल उद्दम में उद्दम भला
0: हर का नाम जपो जी सदा।

0: रसै
1: साध के संग सुनो हर नाओ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग नमन ते विसरे
0: साध संग सर पर निसरे
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा
0: साधु के संग कट कर डीठा
1: साध संग पै आज्ञाकारी
0: साध संगत पई हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध पिटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जाने
0: जेता सुने तेता बखियाने
1: साध की

0: रहत।
1: कर्म ना सुने काहू की निंदा,
0: सबके जाने आपस को मंदा।
1: गुर प्रसाद बिखिया पर हरे,
0: मन की वासना मथे टरे।
1: इंद्री जत पंच लोक ते रहत,
0: नानक कोट मदे को ऐसा परसन।
1: सो जैसे ऊपर सो परसन।

0: संत का दुखी अदबी ते टुटे
1: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे
0: संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए
1: संत का दुखी उजड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: जो साथ बिना अंतर की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किसना है
1: आप

0: कर्ण कारण सो प्रभु समर्थ
1: निर्कर कह नाम हर वर्थ
0: चेतन संचो हो वो भगवंत
1: का निर्मल मंत
0: एक आस रखो मन माहे
1: नानक पिंड जाए
0: जिस धन को चार कुंड टुटतावे
1: हर सेवा ते पावे
0: जिस सुख को निध बच्छे मीत
1: सुख साधु संग परीत
0: जिस शोभा को करे भली करनी
1: सा शोभा पद हर की

सुन कहे सब कोई, अनहद सुन कहां ते होई, अनहद सुनर है अनहद सुनर ते से कैसे, जिस ते उपजे तिस ही जैसे, ओई जन्म न मरे न आवे जा, नानक गुरमुख मन समझाए, नौ सा

जल जाए, दुरमत बिछड़ चोटां खाए, माने हुक्म सवै गुण ज्ञान, नानक दरगह पावै मान, साच बखर तन पल्ले होए, आप तरे तारे पीस होए, सहजरता बूझे पत होए, ताँ की कीमत करे न कोय, जय देखा ते रिहा समाय, नानक पार परे सच पाए, सो शब्द कहा का वास कथिले, जित तरिये पव जल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन अधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच लिव लागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाए, सो शब्द को निरंतर वास, अलखूं जय देखा तै सोई, सो शब्द को निरंतर वास, अलखूं जय देखा तै सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई, नदर करे शब्द घट मैं वसै, बिचो भरम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल वाणी, नामो मन वसाए, शब्द गुरु पव सागर तरिए, इत उत एको जाने, चेहन वरन नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै।

कहाँ रस खाई, ज्ञान की मुद्रा कवन अवतु, सिद्ध की कवन कमाई, बिन शब्दे रस ना आवै अवतु, हमें प्यास न जाई, शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अगाई, कवन बुद्ध जित अस्थिर रहिए, कित भोजन तृप्तास।

पौड़ी बेकी श्रेष्ठ उपायन सब हुक्म आवै जाय बेकी श्रेष्ठ उपायन सब हुक्म आवै जाय समाही आपे वेख वेख सदा दूजा को नाही ज्यो पावै तो रख तो गुर शब्द बुझाही सबना तेरा जोर है ज्यो पावै तिवे चलाही तुद जीवन मैं नाही को किस आग सुनाई श्लोक महला तीजा परम भुलाई सब जग फ्री फावी होई भाल सो सौ शांत न देवी क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याईये अंतर रखिया उरतार नानक घर बैठिया सो पाया जा किरपा कीती करतार महला तीजा धंधा तावत दिन गया रैण गवाई सोए कूड़ बोल विख खाया मनमुख चलिया रोए सिरे ऊपर जम डंड है दूजे पाए पत खोए हर नाम कदे न चेत्यो फिर आवन जाना होए गुर प्रसादी हर मन वसै जम डंड न लागे कोए नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए पौड़ी एक अपनी सिफत लायन दे सतगुरमती इकना नो नाओ बख्शन अस्थिर हर सती

संसार की वर्तन गुरमती कट चानना आनैर विनाशन हुक्मै ही सब साजियन रविया सब बण त्रैण सब किश आपे आप है गुरमुख सदा हर पण शब्द ही सो जी पई सच्चे आप बुझाई श्लोक महला

सातल अंत गणत गणावे अखरिया गणत साचा सोय अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान न होय तूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं विजोग विछड़िया मिलै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत् चुगे मिले कसे तिनको फास न रंच उड़े तबेगल बेगुले तख चोग कणी पंख तुट तुटे फाही पड़ी अवगुण भीड़ बनी बिन साचे क्यों छूटिए हर गुण कर्म मणि आप छड़ाए छूटिए वड़ा आप तनी गुर प्रसादी छूटिए कृपा आप करे अपने हथ वड़िया बुढ़ाइया जय पावे तै दे थर थर कम पै जीअड़ा थान विहुणा होए थान मान सचेक है काज न फिटै कोय थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा विचार सुर नर नाथ नाथ तू निदारा आधार सर्बे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत न पारावार थान थनंतर रव रहया गुर शब्दी विचार अणमंगया दान देव सी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखण हार दया करह प्रभ मेल लहै खिन मह ढाहे ओसार दाना तू बीना तू ही दाना कै सिर दान दालत पंजन दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान तन गए बह चूरिए तन मह चीत गवार तन विरली सच संचया निर्मल नाम प्यार तन गया ता जान दे जे राचह रंग एक मन दी जैस्यो सिर सौंपिए पी करते की टेक तंदा तावत रह गए मन मह शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पए पेटे गुर गोविंद बन बन फिरती ढूंढती बस्त रही घर बार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार नाना करत न छुटी है बिन गुण जंपर जाहे ना तिस एह ना ओह है अब गुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान बिन नावै निरपौ कहा क्या जाना अभिमहान था कर ही के वापड़ा हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले किस पह करी पुकार नानक प्रयों प्रयों जे करी मेले मेलन हार जिन वे छोड़ी सो मेल सी गुर कहे ता पार पाप बुरा पापी को प्यारा पाप लदे पापे पासारा पर हर आप पछाणे आप ना तिस सोग विजोग संताप नर कपड़ां तो क्यों रहे क्यों बंचे जम काल क्यों आवन जाना विसरै झूठ बुरा खै काल मन जंजाली बेड़िया पी जंजाला माहे बिन नावे क्यों छुटिए पापे पचे पचाहे फिर फाही फासे कौआ फिर पछथाना अब क्या हुआ फाथा चोग चुगे नहीं बुझे सतगुर मिले ता आखी सूजे ज्यो मछली फाथी जमजाल बिन गुरदा ते मुक्त ना पहाल फिर आवे फिर जाए इक रंग रचे रहे लिवलाए इव छूटे फिर फास न पाए बीरा बीरा कर रही बीर पै बैराए बीर चले कर अपने बहन बिरह जल जाए बाबल कह कर बेटड़ी बाली बाल नेह जे लोड़ है वर कामणी सतगुर से ते बिरलो ज्ञानी बुझणो सतगुर साच मिले ना ठाकुर हथ बढ़ाइया जय पावे तै दे बाणी बिरलो भी जा विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पन पन घड़िए काड़ काड़ भजै ठाहे ओ सारे उसरे ठाहे सर पर सोखे पी पर सपोख है समरथ वे परवाह है परम पलाने पै दीवाने बिन पागा क्या पाईए गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचै तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछो ताइए पब्बे पाले गुरमुख बुझे ता निज कर वासा पाइए पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निरासा तरिए गुर प्रसादी आपो चीने जीव त्यां इव मरिए माया माया करमुए माया किसे न साथ।

सो सह साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिसा बास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिए तन काचा बिख छार सह सदाए संच तन दुबदा होए खुआर सचियारी सच संचया साचो नाम अमोल हर नरमायलु जलो पत साची सच बोल साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकुर मन वसै हों बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान विख्या अमृत कह बूझे पुरख सुजान खिमा भी होने खप गए खूहण लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणे अपना खुले बंद न पाए शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापे सदा गुण अंतर मन धीर हों मैं खपे खपाए सी बीजो बथ विकार जंतो पाए बिच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोय सृष्टा करे सनहचो होय संपै क्यों को ईसर त्याई है संपै पर्ब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चाले होर बिन साचे की दरगह मान हारा पीवै छुटे निदान हेरत हेरत हे सखी होय रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान हार डोर कन कंकन कणे कर था की सीगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गल हार नानक गुरमुख पाईए हर स्यों प्रीत प्यार हार बेन केन सुख पाया देखो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याईए हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया कर तार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग तार करते हथ वड़ियाईया बुझ गुर विचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों पावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मन मुख भूले पचमुए उबरे गुर विचार जे पुरख नदर ना वई तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुरे अपने जिन हृदय दिता दिखाए पादा पढ़िया आखिया विद्या बिचरे सहज सुभाए विद्या सोदे तत लह राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खट्टे बिख खाए मूर्ख शब्द न चीने सूझ बूझ नहकाए पादा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे नाम समालो नाम संग्रहो लाहा जग महले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बिना जिस राम नाम गल हार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्त काट तरी तिसागे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाये सहज पाए सच लेओ क्या पविये सच सूचा होए सच शब्द बिन मुक्त न होए रहाओ कवने तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हो संत जना बल जाओ कह बैसो कह रही है बाले कह आओ कह जाहो नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो कट कट वैस निरंतर रही है चाल है सतगुर पहाए सहज आए हुक्म सदाए नानक सदा रजाए आसन बैसन थेरा नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे सच्चे सच समाए दुनिया सागर दुतर कहिए क्यों कर पाइए पारो चारपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बिचारो आपे आखे आपे समझे तिसके आ उतर दीजे साच कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजे जैसे जल में है कमल निरालम मुर्गाई न साणे सुरत शब्द पव सागर तरिये नानक नाम बखाणे रह एकांत एको मन वसिया आसा माहे निरासो अगमा गोचर देख दिखाए नानक ताका दासो सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच बिचारो रोस न की जय उतर दीजे क्यों पाइए गुरुद्वारो एह मन चलतो।